महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की वी पिंस फाउन एफ एम पिंतनल पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

I love you. ये शानदार डुएट हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम पिंटनल पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर है, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

क्षमा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, क्षमा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पांव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाए रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

तो दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार 1926 कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के आज गालो।

मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैव टू नॉट ऑल्टे लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम, कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं महान संगीतकार यार फाइव तक सेस तक सीफन तक द ग्रेट ग्रेट ग्रेट मैस्ट्रो मदन मोहन जी के कुछ नगमे आप सुनेंगे, उसके बारे में कुछ बातें भी आप सुनेंगे, और उसके बाद सिर्फ नगमे सुनेंगे आप जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है भी, कुछ शेर शायरी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना यारो, मजे लेते रहना जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, और आप सभी को हिल फील लाइस्टर प्लेजियर।

गालो, मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्यारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे एक अति सुंदर बयान, ऐड फिल्म जहां तुम वहां हम, आकाशवाणी में ये नगमा पेश किया गया, सुपरहिट सॉन्ग कैसे कटेगी जिंदगी और वो भी तेरे बगैर, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मास्टरो मदन मोहन रफी साहब जी के मधुर आवाज में।

Beautiful song dilko chulene wala bayan sunaya aap sabhi ko suru ka bacha the king of melody Padma Shri Muhammad Rafi sahab composed by maestro Madan Mohan ji. Agla bayan ek aur zabardast song hai aur ek bar phir suru ka bacha the king of melody Padma Shri Muhammad Rafi sahab from the movie Sharabi 1964 Rajendra Krishan ka लिखा हुआ सुपर हिट सॉन्ग कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर आएगा रवि साहब जी के मधुर आवाज में आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

Beautiful Song, Wonderful Song from the movie Sharabi 1964, composed by Maestro Madan Mohan Alfazete Rajender Krishan Kaur Awaz Surokabacha Ravi Sahib Ji Ka. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नगमे मदन साहब ने रफ़ी साहब और लता जी के लिए कंपोज किया है। लता जी को तो वो अपना बहन मानता था और राखी के दिन ये दोनों भाई बहन बहुत ही शान और शौकत के साथ रक्षाबंधन मिल के मनाते थे। तो अब आ रही है आप श्रोताओं की खिदमत में सुरोका देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे। ऐड फिल्म अनपढ़ निकटिंग ट्वीन सिस्टर राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

अनपढ़ आपकी नजरों ने समझा, सुरों का देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर बड़का भैया श्री मदन मोहन जी। एक और अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। राजा मेहदी अली खां एक महान लेखक था जिसके साथ मदन मोहन जी ने बहुत काम किए और उन्हीं के अल्फाज में आप सुनेंगे लता जी के मधुर आवाज में। अगर मुझ है मोहब्बत है, क्या बात है, कंपोज बाय माएस्ट्रो मदन मोहन जी फ्रॉम द मूवी आपकी परछाइयां, ऑल्सो फ्रॉम नेक दिन फिर सस्तख।

0: Beautiful song.
1: To enjoy.
0: Wonderful song from the movie Apekeeper China 1964. Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke madhura awaaz mein aap sabko neeti sundar bayan suna. Composed by Madan Mohan Alfazeti, Raja Mehdi Ali Khan ka. To vaada ke mutabik hamare priye priye shrotaon, kuch gyan ke baatein ho jaye. पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मनुष्य, मैन सहित के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यही आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हम लोग सीखेंगे, तो ज़रा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने ज़माने का आदमी था श्री मार्कस ऑरेलियस। Hij was een Romeins keizer en leefde van 121 tot 180 na Christus. Marcus Aurelius ne kaha hai manushya ke bare mein aroki, vergeet niet, het is de geheime kracht diep in ons weggeborgen die onze drijfveren stuurt. Daar komt die overredende stem vandaan. Daar ligt de kern van het leven. Daar zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelf? Ik hoor Mahagyani Sri Inayat Khan ne bhi kaha hai manushya ke bare mein ki, hij was een India's musicus, schrijver en filosoof. Leefde van 1882 tot 1927. Aur Inayat Khan ne kaha hai manushya ke bare mein ki, de mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet. Agema kaha hai Sri Midas Dekker. Hij is een Nederlands bioloog, presentator en schrijver, geboren 1946. Midas Dekkers ne kaha hai manushya ke bare mein ki, een huisdier geeft ieder mens de kans een baasje te worden. Aage me kaha hai Sri Napoleon Bonaparte. Hij was een Frans staatsman en keizer, leefde van 1769 tot 1821. Au Napoleon Bonaparte ne kaha hai manushya ke bare mein ki, er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen. Vrees en eigenbelang. Friedrich Nietzsche. Hij was een Duits dichter en filosoof. Leefde van 1844 tot 1900. Friedrich Nietzsche, nekahage, manusche, kebarmerki. Het slechte is de beste kracht van de mens. Blaise Pascal, hij was een Frans wis- en natuurkundige en filosoof, leefde van 1623 tot 1662. Blaise Pascal, ne kaha hai manushya ke bare mein ki, in ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen. Albert Einstein, Mahagyani, ook de uitvinder van de atoombom. Hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige, leefde van 1879 tot 1955. Albert Einstein, nekahai manushya kibarmiaruki, de mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze. Het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert. Freek de Jonge, hij is een Nederlands cabaretier, geboren 1944. Freek de Jonge, bikuch kahai manushya ke bare mein yaro, aur wo kahai ki, een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. Een doordenkertje hoor, heel goed Freek. Aldous Huxley, hij was een Engels schrijver, leefde van 1894 tot 1963. और अल्दुस हक्सली ने कहा है मनुष्य के बारे में यार कि ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. En de laatste van vandaag, Kaisri Confucius. Hij was een Chinees filosoof en leefde van 479 voor Christus tot 551 voor Christus. Bahut hi purane zamane ka aadmi tha. Aur Confucius, Chinese filosoof, ne kaha hai manushya ke bare mein yaro ki het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. Kya baat hai, bahut hi satya baat, satya vachan, uncha baat ne kaha hai Chinese filosof Confucius ji ne. तुम्हारे पेपरी श्रोताओं, अभी आप कुछ उदाहरण कहावतें सुने जो मनुष्य के बारे में जाता है. युवनेत गुण लुस्त्र नारन पार सेर ले रैक सितात दी ओवर द मेंस हेट हिंग. ये अशोमील लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो जरूर इन बातों से हम लोग सीखेंगे ना. तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो. अब आप कुछ बातें सुनेंगे ये महान संगीत के बारे में, कुछ अनसुनी बातें, और ख़ास करके उनके बेटा समीर मदन मोहन कोहली के आवाज़ में आप उनके पिताजी के दिग्रेट मदन मोहन जी के बारे में कुछ बातें सुनेंगे. मिलके सुनते हैं.
1: नमस्ते, मैं हूँ एकता जैन और आज का हमारा एपिसोड सिर्फ म्यूजिक पे रहने वाला है. वो म्यूजिक जो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी के दिल के करीब है, और हमारे दिल के करीब जो होने वाले हैं, आज होने वाले हैं मदन मोहन जी के बेटे समीर मोहन जी. हेलो,
2: हाय हाय, थैंक यू.
1: आई नो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही
2: हूं. पहले कि आप कोई सवाल पूछे मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके और आपके देखने वालों को कि इस साल मदन जी को हमसे बिछड़े हुए एग्जैक्टली 46 इयर्स हो जाए, और अगर इतनी सालों के बाद भी आप लोग याद करते हैं उन्हें, आपके लिसनर्स याद करते हैं, ये कुदरत का करिश्मा है. एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू ऑल हिज ऑल द लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड पीपल हु लव हिज म्यूजिक फॉर हैविंग केप्ट हिम एंड हिज फिनोमिनल लेगेसी अलाइव. थैंक यू सो मच. अब आप पूछे जो आप पूछना चाहते
1: हैं. मैं ये सबसे पहले तो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही थी उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज
2: बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं.
1: सच अ ग्रेट मैन.
2: थैंक यू सो मच.
1: बिकॉज वी कैन नॉट से इन वर्ड्स कि वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया हमारे
2: जी, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी मेरी भी जबान थरथराने लगती है जब उनके बारे में बात करता हूँ.
3: Het is Amazon Prime Day. Twee dagen lang geweldig.

0: sorry about that.
1: But
0: हम मदन जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, फिर वो इंडिया कैसे आए, बिकॉज हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहीं और से इंडिया आए.
1: जी नहीं, ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी की पैदाइश बगदाद में हुई थी.
0: ओके.
1: जो इराक का कैपिटल है. वो जमाने में अंग्रेजों की मिल्कियत थी, पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और मेरे ग्रैंडफादर वहां इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे.
0: ओके.
1: तो 1924 में 25 जून को मदन जी की पैदाइश बगदाद में हुई, और फिर करीब 7-8 साल बाद जब इराक अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब मेरे ग्रैंडफादर अब वापस आ गए अपने होम टाउन जो इस वक्त पाकिस्तान में है.
0: okay.
1: चकवाल नाम का एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी के पास, और फिर मदन जी की कुछ साल वहां पैदाइश हुई, और फिर बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे शिफ्ट हुए. पहले बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर बने, देविका रानी उसकी मालिक थी उस जमाने में, हिमांशु राय उनके हस्बैंड, और बाद में फिर बॉम्बे टॉकीज छोड़ के फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पार्टनर बने. तो मदन जी की बेसिकली स्कूलिंग मुंबई में ही हुई है, सेंट मैरी स्कूल.
0: वाओ, ओ माय गॉड, दैट इज सच अ लॉन्ग जर्नी ऑफ
1: वेरी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बगदाद टू चकवाल टू मुंबई. यस,
0: एंड मुंबई से हमारे सबके दिलों में.
1: नहीं, ऊपर मुंबई से भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है कि मेरे ग्रैंडफादर हालांकि स्टूडियो के मालिक थे
0: जी,
1: मदन जी उस जमाने में अपने यंगर डेज में शौक था कि मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करूं, म्यूजिक में आऊं. मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि वो फिल्मों में आए. तो उन्होंने उनको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया. पहले देहरादून में एक स्कूल है विच बेसिकली ट्रेन्स पीपल फॉर द आर्मी.
0: ओके.
1: तो वहां पे करीब एक साल रहे स्कूलिंग खत्म करने के बाद.
0: okay.
1: और फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो मदन जी ज्वाइंट द आर्मी, एंड 2 साल के लिए वो फौज में रहे. 1944 और जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उन्होंने आर्मी छोड़ दी.
0: But how army and music and
1: अब वो क्या आर्मी तो इसलिए हुआ जैसे आपसे कहा कि मेरे ग्रैंडफादर का थोड़ा सा बहुत दबाव था उन पर.
0: okay.
1: पर बेसिकली शौक तो म्यूजिक का था. फिर उन्होंने आर्मी छोड़ी तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उन्हें एक नौकरी मिल गई. वो पहले 1-2 साल वहां रहे, फिर दिल्ली आए पर कुछ खुश नहीं रहे, और फिर वापस बॉम्बे आए स्ट्रगल करने के लिए. बट हुआ क्या कि मेरे ग्रैंडफादर को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई. उन्होंने उनको लिटरली एक तरह से कहूँ तो घर से बेदखल कर दिया. तो मदन जी जो भी बने छोटे या बड़े अपने बलबूते पे बने.
0: छोटे बड़े नहीं होते.
1: नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल, उनको इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, मेरे ग्रैंडफादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर शुरू करने में और बनाने में. मैंने तो कई आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं 6-6 दिन रोड पे सो रहा हूँ.
0: wow.
1: मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया है, बट एक जिद थी कि मुझे म्यूजिक की बिजनेस में ही, म्यूजिक की दुनिया में ही आना है.
0: तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है
1: जी.
0: वो जिस साल में मिला तो उसके इंसिडेंट के बारे में हमने सुना.
1: वह क्या है कि उस वक्त तक मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं तो मदन जी थोड़े से ऊब गए थे, थोड़े से डिसिल्यूजन हो गए थे कि इतने साल इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें कभी उस किस्म की रिकग्निशन मिली नहीं. तो ये जब मिला उन्हें, ये फिल्म थी दस्तक.
0: okay.
1: संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान इसमें थे, और जब मैंने उनको जाके खबर दी तो वो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे. उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा कि यू एक्चुअली वन इट, बिकॉज मोर देन ही वाज अ लिटिल डिसिल्यूजन्ड एंड लिटिल कट अप विद द वे द इंडस्ट्री वाज ट्रीटिंग हिम.
0: ओके.
1: आर्टिस्ट है ना, अब क्या करें, आर्टिस्ट थोड़े से सेंसिटिव होते हैं बेसिकली.
0: और लता जी के साथ उनका कैसा रिश्ता था?
1: लता जी के साथ
0: सुना है कि मतलब कुछ ज्यादा ही
1: ऐसा है कि मैंने भी सुना है कि लता मदन जी के साथ इससे पहले कि मदन जी म्यूजिक डायरेक्टर बने, मदन जी ने अपने एक फादर की एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें लता जी के साथ एक डुएट गाया था, बच्चों का गाना था. तो उस वक्त लता जी से पहली मुलाकात हुई थी उनकी, और उस वक्त उन्होंने लता जी से कहा था कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप ले गाएं. पर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का कभी कभी रिवाज है, लोगों ने जाके लता जी के कान भर दिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, पता नहीं कितना सीरियस है. तो मेरे फादर की जो पहली फिल्म थी आंखें, इसके बावजूद कि लता जी को ऑफर गया था, वो उन्होंने उस फिल्म में गाने से इनकार कर.
0: ओके.
1: तो उसके बाद लता जी जाके मिले उनसे और उनसे मुलाकात हुई, और बड़ी सपोजिटली इमोशनल मुलाकात हुई. उसी मुलाकात में उन्होंने उनको अपनी बहन बना दिया और लता जी ने एंड तक ना ही उनकी बहन बनने का नाता निभाया, हमें हमारी तो गॉड मदर रही, हम बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है. इट्स बीन अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. बड़े थे और उनकी लिटरली कभी कभी बेटी भी बुलाते थे उन्हें, तो इट वॉज वेरी स्पेशल बॉन्ड.
0: यस. तो उनके फेवरेट सिंगर कौन थे?
1: लता मंगेशकर. वो तो कभी कभी ये भी कहते थे कि अगर मैं कोई मेल सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो मैं सबकॉन्शियसली ये सोच रहा हूँ कि अगर लता गाती तो कैसे
0: गाती.
1: रफी साहब वाज वेरी फेवरेट. रफी साहब किसके फेवरेट नहीं थे?
0: किसी के फेवरेट, सबके फेवरेट.
1: इन द अर्ली डेज ऑफ हिज करियर वेरी डियर फ्रेंड विज तलत महमूद साहब सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स बट देन ही फेडेड आउट अ लिटिल बिट. तो बेसिकली रफी साहब, लता जी, आशा जी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स.
0: सो ये उनकी जो जर्नी थी एंड उसके बाद हमने सुना कि उनके ऊपर एक स्टैंप आई थी, 5 रुपए की स्टैंप
1: ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ
0: इंडिया.
1: ये करीब 5-6 साल पहले की बात है कि करीबन 100 करीबन इंडस्ट्री के 100 पर्सनालिटीज पर उनको ये स्टैंप बना था एंड ही वाज वन ऑफ द लकी वंस टू हैव बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
0: Wow.
1: To give him this
0: honor. It's really an honor ki like aapke naam se aapke photo ke saath ek stamp.
1: Bilkul, bilkul, bilkul.
0: And it's a symbol of India basically.
1: Absolutely.
0: Okay, to jo unki jo last film mein jo music aaya, hum kehte hain ki Veer Zara mein unka jo music aaya, to how is the feeling about that thing?
1: It's unbelievable. Because dekhiye kya hai ki उस जमाने में, जिस जमाने में वो म्यूजिक देते थे, फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार सबसे बड़े हीरो थे, पर दिलीप साहब के साथ उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की बिकॉज वो कमर्शियली उस ब्रैकेट में कभी आए ही नहीं. तो ये तो अजूबा था. आई मीन इट्स आई थिंक इज द ओनली कंपोजर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम्स टू जिनका ओरिजिनल काम उनके जाने के 30 साल बाद लोगों के सामने आया है. ओरिजिनल काम जो पहले कभी लोगों के सामने नहीं आया. ये धुनी उनकी आवाज में उनके स्कूल से पढ़ी थी, हमें मिली थी. मेरे भाई साहब जो उस वक्त यश चोपड़ा साहब के लिए काम कर रहे थे, उनको सुनाई, उनको अच्छी लगी. द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो फिल्म बनी, वो म्यूजिक बहुत, और उन्हें उस फिल्म के लिए अपना पहला पॉपुलर अवार्ड, द आईफा अवार्ड 2004 का मिला. द ओनली पॉपुलर अवार्ड ऑफ हिज करियर. न्यू फुलटारा नेचुरल एंड बियोलॉजिकल.

0: लता जी की जो हमने स्पेशल बॉन्ड की बात की, उन्हें लता जी एक स्पेशल नाम से भी बुलाती थी, वो
1: मदन भैया
0: नहीं, देयर इज समथिंग एल्स, गजल के
1: बादशाह। वो क्या है, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, जिसका नाम था अदालत। अदालत की थी, अदालत वाज अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु बिकम्स अ नॉच वुमन, यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की। तो उसमें गजलों का स्वर स्कोप था, वो मुजरा गाती है। तो उसमें तीन गजलें इतनी मशहूर हुई, हालांकि फिल्म नहीं चली, पर तो उस पर के बाद ऊपर एक स्टैंप लग गया। और ये बात सही है कि फिल्मों में गजलों का जो चलन चला वो बादल जी से ही शुरू हुआ, और बादल जी डिड फिनोमिनल वर्क। बट इट्स नॉट दैट द ओनली, दैट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वर्क ही डिड। उन्होंने हर किस्म का गाना बनाया है। अब आप देखिए, तुम जो मिल गए हो, आज लोग कहते हैं कि इज द अल्टीमेट वेस्टर्न सॉन्ग इन हिंदी फिल्म्स, वो भी उनका है
0: जी।
1: तो हर किस्म का, लग जा गले भी उनका है, तो हर किस्म के गाने बनाए। अब लग जा गले, आपको मालूम होगा, आप YouTube पे इतना काम करते, 200 मिलियन व्यूज ऑन YouTube,
0: यस,
1: अपार्ट फ्रॉम आई थिंक ऑलमोस्ट 12 to 13,000 versions of that song on YouTube. So it's
0: versions अभी आजकल cover.
1: तो ये जो unfortunately ये जो success उनके नाम आई है, unfortunately उनके जीते जी उन्होंने नहीं देखा।
0: That is little sad part of.
1: और वो शायद to a great extent वो उन्हें लेके चला गया साथ। He was a little disillusioned towards the end of his life.
0: Oh.
1: Because he felt he was not wanted. He felt people don't appreciate him. वो एक दिल में एक feeling आ गई थी कहीं ना कहीं।
0: Oh my God! Like कभी भी, हमेशा हम लोग ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये हमेशा सुना है कि किसी को कुछ अप्रिसिएशन उसके जीते जी नहीं मिलता है, जैसे हमने मदन जी के बारे में सुना। सेम वैसी ही बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुनी। जब वो जिंदा थे तब उनके पास उतनी अप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिली। उनके मरने के बाद जो उनकी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई, दैट मेड लाइक हिस्ट्री।
1: एब्सोल्युटली।
0: सो आई डोंट नो व्हाट्स विद द फिल्म इंडस्ट्री और ये,
1: मतलब दे फॉलो एन एडेज कॉल्ड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सो ठीक है, इट्स इन द बेट, ओके। आखिर प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है फिल्म में, तो वो तो चाहे मदन जी पे के बारे में लोग कहते हैं म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है बट फिल्में चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में। और मदन जी वाज अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन। उन्होंने कभी किसी के पास वो गए नहीं काम मांगने के लिए, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे काम दो। वो अपनी जिंदगी अपने असूलों पर जीते रहे, और शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती जो लोग असूल पसंद लोग हैं।
0: That's what I think. तो मदन जी ने जो फिल्म में तो काम किया है, उनके अलावा जो हम कहते हैं नॉन फिल्मी एल्बम्स,
1: नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं थे, नॉट
0: कभी नहीं किए उन्होंने। He was not drawn to it.
1: No, उस जमाने में वो चलन था ही
0: नहीं।
1: Not to a great extent.
0: Okay.
1: और मदन जी एक चीज आपको याद है, मदन जी died very young. He was only 51 when he passed away. He had a lot of music left in him, but that's the way life is.
0: That's the way life is. So, ये थे समीर जी मदन मोहन जी के सुपुत्र।
1: बिल्कुल।
0: And we had
1: very very proud to be his son.
0: Yes, very proud son. And
1: ऊपर वाला मुझे हर जन्म में उनका बेटा बना। नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ।
0: तथास्तु।
1: Thank you.
0: I am being little funny here.
1: No, it's absolutely.
0: But that's how the life goes on. You have to live it on.
1: No, we are. और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आज 46 साल हो गए। मैं वो जब गुजरे, मैं 14 साल का था, आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ। तो वक्त निकल गया, पर एक चीज जरूर है कि जितना उनके जाने के बाद उनके म्यूजिक को अप्रिसिएशन, इट्स अनबिलीवेबल। मैं आपको बता नहीं सकता, इट इज सिंप द वे ही इज रिस्पेक्टेड बाय द यंगर जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ द सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स। उनका नाम जब कहीं लिया जाता है तो लोग इज्जत से सर झुकाते हैं अपना। ये अजूबा है, दिस इज अ मिरेकल, एब्सोल्युटली, एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड हिज फैंस फॉर दैट।
0: यस यस, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू एकता जी, थैंक यू सो मच।
0: तो ये थे समीर जी, एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हमारी चिट चैट, बिकॉज ये थोड़ा सा सन का प्रॉब्लम, ये वो बहुत कुछ चल रहा था, बट वी हैड एन अमेजिंग लाइफ जर्नी ऑफ मदन मोहन जी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्टार्टिंग में आई वॉज स्टैमरिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए उनके लिए। बट जब उनके बेटे से बात की तो अच्छा लगा कि समीर जी ने हमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी से हमें गुजारा. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.
2: तो जी हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप अभी कुछ अनसुनी बातें सुना जो ये महान संगीतकार मदन मोहन जी के बेटा समीर मदन मोहन कोहली जी ने आप श्रोताओं को सुनाया. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है. तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत.

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धांतोर हिंदुस्तानी रेडियो उक्त बलस्त्र फिया द प्लस रेडियो एंड नैचुरलिक इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट और खानिसात और ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जरूर ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे तैरेंस कंटोर उर अपने 7 तक 3 6 2 27 40, या तो आप तार करे अपने 7 तक 3 26 20 77। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंटी नो खिन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे आप 9 7 तक 3 5 6 2 27 40, या तो आप 9 7 तक 3 2 6 2 27 70 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे तो फिल्म आग का दरिया जो रिलीज किया गया था 1999 में, और इस फिल्म में दिलीप साहब जी ने काम किया है। मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल अभिनेत्री द ग्रेट रेखा जी के साथ साथ भी काम किया है राजीव कपूर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का। कुछ गाने रह गया था सुनाने के, तो मिलके सुनते हैं छम छम फ्रॉम द मूवी। ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। महान गायक कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी ने मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं। आप श्रोताओं के नाम

पी आग का डरिया, दिल है लूटने को तैयार। मशहूर गाने वाली कविता कृष्णा मूर्ति और अनुराधा पौडवाल कोरस के साथ मिलके आप श्रोताओं को ये अति सुंदर बयान सुनाया। कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाज़े थे राजेंद्र कृष्ण जी का। अगला बयान गोरिया उसकी दीवानी, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, अल्फाज़े राजेंद्र कृष्ण का, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

beautiful song from the movie आग का डरिया, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज और अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण का। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ऑफ दिस गोत नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किया है, तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आग का डरिया और इस बार नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल के ब्यूटीफुल वॉइस में ये अति सुंदर बयान की रिश्ता ये मोहब्बत का। एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँच पर और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का।

रिश्ता ये मोहब्बत का निभाना है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साइंस पर सुनाया आप सभी को नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल। अल्फाज थे राजेंद्र कृष्ण का फ्रॉम द मूवी आग का डरिया। तो मैं प्रिय श्रोताओं सभी नगमे ऐड फिल्म आग का डरिया मैंने आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1999, फिल्म सौदागर। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजकुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न मनीषा कोयराला और जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में काम किए हैं दिलीप साहब जी के साथ। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और लेखक है आनंद बख्शी। तो फिल्म सौदागर में से आप नगमे आप सुनेंगे इमली का बूटा बेरी का पेड़। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले।

अति सुंदर बयान इमली का बूटा बेड़ी का पेड़ एंड फिल्म सौदागर मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे थे आनंद बख्शी का। राधा नाचेगी फ्रॉम द सेम मूवी सौदागर 1991 और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी साथ दे रहा है महान गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे है आनंद।

Radha Nachegi from the movie Saudagar. Manisha Koirala-kaye, super hit movie with Dilip Kumar and Raj Kumar. Anand Bakshi ke alfaze, Lakshmikant Pyare Lal ke saaj. Aur gaane wale the Bharat Ratn Queen of Melody, Lata Mangeshkar aur Mohammad Aziz. Saudagar sauda karke dil ले ले दिल देकर क्या बात है. ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को तीन मशहूर गाने वाले ऐद यार निखंत कविता कृष्णमूर्ति सुखविंदर सिंह और मनहर उदास मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं. अनंत बख्शी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

Băiane, title song from the movie Soul Dagger, Dillele Dil Dekar, beautiful song, Kavita Krishnamurti, Sukhwinder Singh, oh, Manhar Udas, Tino ne Milke Yati Sundar Bayan, Ko Sunaya Aap Sabhi Ko, Anand Bakshi Ke Alfaze, Lakshmikant Pyare Lal Kasai. तो मैं पिपली श्रोता हूँ, वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में, शेयर्स है यारो। खुदा ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, एक दोस्त को मुझसे मिलाया ना होता, जिंदगी हो जाती हमारी बेजान। जिंदगी हो जाती हमारी बेजान अगर आप जैसे दोस्त को पाया ना होता। क्या बात, रब ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, इस जहां में कोई हमारा नहीं है। छुआ उनका दामन तो वो हंसकर बोले, छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, दोस्त ये दामन तुम्हारा नहीं है। हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, अफताब तुझसे नूर उधार मांगे। रब करे तू दोस्ती ऐसी निभाएं, रब करे तू दोस्ती ऐसे निभाएं के लोग मुझसे तेरी दोस्ती उधार मांगे। क्या बात, दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, इससे अच्छी कोई तस्वीर भी नहीं होती। एक नाजुक प्यार का धागा है, एक नाजुक प्यार का धागा है दोस्ती, फिर भी इसे पक्की कोई जंजीर नहीं होती। गुनाह करके सजा से डरते हैं, गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। और हो जाए, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो है जो आपके घर आए और कहे आज क्या पका है, जो भी है जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ये था कुछ दोस्ती के बारे में शेर शियारो। नहीं रुकती, नहीं रुकती तेरी याद आती है, दर्द से भरा हुआ ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है महान गायक अयदियार तख्त निकट द ग्रेट सुरेश वाटकर। अल्फाज है आनंद बख्शी का और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रुकती तेरी याद आती है, अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनाया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दिया महान गायक सुरेश वाटकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर अल्फाज थे आनंद बख्शी जी का। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

ऐसे मैंने श्री रामायण के हर एक कांड में बतलाया कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए बार बार हमें श्री रामायण जी का श्रवण करना चाहिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण जी।

मोर के कंठ की आभा के समान, नीलवर्ण पीतांबर धारी, हाथ में धनुष धारण करने वाले वानर समूह से युक्त, देवताओं से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य जानकी जी के प्राण आधार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के अवध में आने का एक दिन बाकी रह गया, परंतु अयोध्या वासियों के लिए ये एक दिवस युग के समान हो गया है। श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा में कौशल्या, केकई, सुमित्रा, भरत, शत्रुघ्न एवं समस्त अयोध्या वासी सोच ही रहे थे कि श्री हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आकर भरत जी को प्रभु राम के आगमन की सूचना देते हैं।

अयोध्या नगरी में विमान उतरने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को वापस कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी। प्रभु ने सुग्रीव, अंगद, विभीषण आदि से अपनी पावन जन्मभूमि अयोध्या एवं पवित्र सरयू नदी की विशेषताएं समझाई। उधर जब अवध के निवासियों ने विमान से श्री रामचंद्र जी को उतरते देखा तो अपना आपा भूलकर श्री रघुराय की ओर दौड़ पड़े। श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण तथा सीता जी ने गुरु तथा माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। भरत जी श्री रघुराय राम के चरणों से ऐसे लिपट गए जैसे सुंदर से वृक्ष पर अमर बेल लिपट जाती है।

भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, फिर शुभ मुहूर्त विचार कर कुल गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का आदेश दिया। मंत्री सुमंत जी को बुलाकर सभी जगह निमंत्रण भेजने को कहा। अयोध्या नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया। अभिषेक हेतु सातों समुद्रों एवं समस्त तीर्थों से जल मंगाया गया। माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा फूली नहीं समा रहे। भरत जी ऐसे प्रफुल्लित हैं मानो विष पान के बाद किसी को प्राण दान मिल गया हो। राज्य अभिषेक की सभी तैयारियां

ब्रह्मा शिव एवं इंद्र आदि देवगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे हरि, हे दीनानाथ, आपकी माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, चराचर, जीव, कर्म और गुणों से भरे हुए भी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे प्रभु, जिन पर आपकी कृपा दृष्टि होती है वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाती हैं, परंतु जिन्होंने अभिमान में आपकी भक्ति का आदर नहीं किया वे ऊंचे पद पर रहकर भी अपने वास्तविक पद से नीचे गिर जाते हैं। जो श्री चरण श्री लक्ष्मी जी द्वारा सेवित हैं, हम उन चरणों में

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जानकी वल्लभ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो चुका है। चारों ओर श्री रामचंद्र जी की जय के शब्द गूंज उठे। प्रकृति मानो नृत्य करने लगे। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। विप्र वृंद वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। जहां तहां शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। फिर सायकाल में जब उत्सव समाप्त हुआ, तब श्री राम प्रभु ने विभीषण अंगद एवं समस्त वानर दल के ठहरने की उचित व्यवस्था करवाई।

जनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को प्रेम पूर्वक समझाकर उनके आराध्य को भेज दिया एवं नीति धर्म मर्यादा का पालन करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। उनकी देखरेख में अयोध्या राज के समस्त निवासी सुख पूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। छोटे बड़े, धनवान निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। कहीं चोरी ठगी झूठ कपट का व्यवहार नहीं था। कभी कभी तो अयोध्या की खुशियों से देवगण भी ईर्ष्या करने लगते थे।

एक दिवस सुंदर अवसर जानकर श्री हनुमान जी ने करुणा निधान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, श्री भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। श्री राम की अनुमति पाकर श्री भरत जी बोले, हे प्रभु, आपने वेद एवं पुराणों की बड़ाई की है, मैं संतों और असंतों के लक्षण जानना चाहता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भरत, संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का आचरण। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, कटु वचन नहीं बोलते तथा नियम और नीति से विचलित नहीं होते।

दोस्तों प्रिय भक्तों, इसी प्रकार एक दिवस राजसभा में गुरु ब्राह्मण मंत्री आदि बैठे हुए थे। तब प्रभु श्री राम बोले, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अच्छी लगे तो अनुसरण करना। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे विषय भोगों में मत खोना। जो इस अवसर को खो देता है वह फिर 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। जो मानव चोला पाकर मुक्ति का साधन नहीं करता वह आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जगत में एक ही पुण्य है, मन कर्म वचन से सिद्ध संतों के चरणों की सेवा करना।

सज्जनों, तब शिव जी बोले, उमा सुनो, जब दक्ष ने तुम्हारा अपमान कर दिया और तुमने प्राण त्याग दिया, तो मैं निराश सुमेर पर्वत के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वृक्ष पर काकभुशुंडे रहकर श्री हरि का गुणगान करता था। मैं हंस का शरीर धारण कर उसके पास गया, तभी गरुड़ जी भी वहां आ गए। गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से कहा कि हे काकभुशुंडी जी, मुझे भी अपार सुख देने वाली पवित्र कथा सुनो। तब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ को श्री

प्रिय भक्त आत्माओं, कागभूषुंडी जी कहते हैं कि कलयुग में किसी भी जन्म में जो अवध में बस जाता है वो श्री राम जी के परायण हो जाएगा। परंतु काल का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग मोह के वश में हो जाती है। इस युग में पंडित वेदों को बेचने वाले, राजा प्रजा को ही खाने वाले होते हैं। कलयुग में पंडित वही होता है जो आडंबर रचता है, शुद्र ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, स्त्रियां पर पुरुष का साथ करती है और पुरुष पर स्त्री का साथ करते हैं। सिद्ध ब्राह्मण तथा सिद्ध गुरु की हत्या होती है, अनेकों शिष्य पापी होते हैं। अर्थात कलयुग में चहु

प्रिय भक्तों, काक भुसुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं अयोध्या में रहा, परंतु अकाल पड़ने पर मैं कहीं और चला गया और शिव की पूजा करने लगा। वहां एक दिन मैं पूजा कर रहा था और मेरे गुरु जी आ गए। मैंने उनको देखकर भी प्रणाम नहीं किया, अर्थात मुझ जैसे मूढ़मति अज्ञानी ने गुरु का अपमान किया। उसे गुरु तो सहन कर गए, परंतु देवाधिदेव शंकर भगवान ने क्रोध करके सर्प बनकर पेड़ की खोखड़ में जाकर रहने का श्राप दिया। हे पक्षीराज, मेरे जैसे मूढ़ अज्ञानी के लिए यही दंड उचित था।

हे गुरु जी, जब लोमस ऋषि से मैंने ब्रह्म के विषय में पूछा तो उन्होंने मेरी चतुरता एवं अधीरता पर क्रोध करके मुझे फिर से कौवा बनने का श्राप दिया। मैं कौवा बनकर उड़ चला। मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए पसंद है कि मैंने इसी रूप में प्रभु श्री राम के दर्शन पाए थे और सब लीलाएं देखी थी। फिर गरुड़ जी ने काक मुशुंडी से पूछा कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। सज्जनों, तब काक मुशुंडी जी ने बड़े प्रेम से गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का भेद समझाया।

भक्त वत्सल सच्चिदानंद स्वरूप परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, काकभुसुंड जी ने गरुड़ जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के अनेक भेद बतलाए। उन्होंने मानव शरीर को सर्वोत्तम बतलाया, क्योंकि मानव को प्रभु ने बुद्धि विवेक चेतनता प्रदान किए हैं। स्वतंत्र रूप से कर्म करने योग्य केवल मनुष्य शरीर है, परंतु यदि कोई मनुष्य तन पाकर भी पशुओं की भांति आचरण करता है तो इसमें प्रभु का अथवा अन्य किसी का क्या दोष। अतः मनुष्य को मोह माया से ध्यान हटाकर श्री राम प्रभु के चरणों में ध्यान एकाग्र करना चाहिए।

प्रेमियों, इस उत्तरकांड की विशेषता यही है और इससे यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु की परम कृपा से यह मानव शरीर मिला है। इसको यूं ही अहंकार और भौतिक सुखों में व्यतीत कर दिया जाए तो फिर हमारा चारों तरफ से पतन ही पतन, मतलब हानि ही हानि है। भगवान शंकर हमें ये खुद समझा रहे हैं कि मानव शरीर पाकर जो दुराचारी बना उसकी गिनती अधम में यानी पापियों में होती है। प्रभु का ध्यान, प्रभु की भक्ति मानव के लिए सुरक्षा कवच है। प्यारे प्यारे प्रभु भक्त आत्माओं, मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, जिसने आपको श्री रामायण के सातों कांडों का हृदय से भाव विभोर होकर सरल रूप और भावपूर्ण तर्ज में श्रवण कराया, इस श्री रामायण को इस सरल रूप में आपके सामने रखने की मेरी यही अभिलाषा है कि आज के समय के युवा वर्ग भी इससे प्रेरित हो और अपने जीवन को मंगलमय व आनंदित बनाए। इस श्री रामायण गाथा को पूरा करने में मेरी अर्धांगनी राधा जी का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से ये सब संभव हो पाया है। सज्जनों, अगर इस गाथा को श्रवण कराने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। मैं आपका सेवक, भजनिक और उपदेशक गोपाल परदेसी बाबा फ्रॉम नीदरलैंड।

माँ माँ पहला सच्चा प्यार, माँ पहला और सच्चा प्यार। आजकल सोशल मीडिया की शायरी हो या किसी की पर्सनल डायरी हो, सब में पहला प्यार का ही जिक्र करते हैं लोग। सब ने पहला प्यार का जिक्र करते हैं लोग। घर परिवार जाए भाड़ में, पर यार की फिक्र बहुत करते हैं लोग। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता है। चाहकर उसको रुलाया नहीं जाता, फिर क्यों सवाल उठता है, फिर क्यों उस माँ के पहला प्यार को भुला देते हैं लोग। पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, चाहकर भी रुलाया नहीं जाता, फिर क्यों उस माँ के पहले प्यार को भुला देते हैं लोग। जो जीते हैं सिर्फ तेरे लिए उसी को क्यों रुला देते हैं लोग। माना इस दुनिया की नज़र में पहला प्यार रांझा और हीर था, मगर उस माँ का प्यार तो तब से था जब तुम उसके गर्भ में सिर्फ एक लकीर था। और सच्चा प्यार।

किशोर दाजी की आवाज़ में हम यहाँ से और सुने हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदा ही उनका पीछा ही करता है। फिल्म मजबूर से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत।

बचपन का यार, बुढ़ापा का बुखार, हमेशा दिल में ही रहता है। दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभता है। माँ की डांट और झापर, बाप के थप्पर जीवन की राह सिखाती है। नाना नानी का दुलार, दादा दादी का प्यार, हमेशा याद आएंगे। उम्मीद

उम्मीद में अगर जंग लगी उम्मीद, उम्मीद में अगर जंग लगी नाकामी संग लगी, बर्बाद कर देते हैं ये दोनों। जुए की आदत शराब की लत कहीं का नहीं छोड़ते। मैं कहती हूँ खुश रहो सलामत रहो जी भर मुस्कुराओ। पत्थरों का नहीं बल्कि फूलों का घर बनाओ, फूलों से अपना घर सजाओ। इस बार सुनेंगे रास्ते का पत्थर से।

The title song यहाँ से हमने सुने दर रास्ते का पत्थर नेकतिन तुए सिंह फतख में ये पिक्चराइज किया गया है किशोर दा जी की आवाज़ में।

सोचने वाला बात है और थोड़ा कठिन लगेगा सुनने के लिए, पर सच होगा, सच ही है। एक बुजुर्ग ने सच कहा है कि औरत ही औरत के दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसा, अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो सास में बुराई कैसे, अगर बेटी के दुख से दिल दहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसे, और अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है तो भाभी का मायके जाना सही कैसे। हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा सोचना चाहिए।

0: जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच
1: की यात्रा जो है उसे जीवन कहते हैं।

है प्यारा, सुना दी हमको किशोरदा जी और साथ दे रहे थे अनुपमा फिल्म के नाम काश काश। फिल्म काश जो 1983 में पिक्चराइज किया गया है। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: बहुत दूर से तुम्हें लेने आया हूं, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें मेरे भोलेनाथ। और आपको पता है सभी लोग मुझे पागल पागल कहते हैं, पर अब तो आप मिल गए हो ना, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। और चिंता मत करो, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अब जहां शंकर होंगे वहीं शेखर होगा।
1: अरे ये कौन है? ये पागल है।
2: अरे पागल है तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं शिवलिंग के साथ? निकालो इसे मंदिर से बाहर।
1: पागल है।
2: निकालो इसे मंदिर से बाहर।

मेरा हाथ थाम ले, भोले भोले मेरा हाथ थाम ले, हाथ थामे और कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आप राह चलाने वाला है। माँ खुशियों के ज़मीन होती है, माँ खुशियों की ज़मीन होती है, माँ बच्चों के लिए भगवान होती है। देख के अपने औलाद के आँखों में आंसू, देख के अपने औलाद के आँखों में आंसू, खुद भी जो अपनी आँखें भिगो ले, वो माँ ही होती है।

हिमेश रेशमिया के साज और संगीत में यहाँ से हमने सुने ये सुंदर सा गीत ऐ मेरी वफा। एक हस्ती है जो जान से है प्यारी, एक हस्ती है जो जान से है प्यारी, जो जान से भी बढ़कर शान है हम।

माँ के प्यार का बदला इस जन्म में तो क्या। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माँ का प्यार का माँ का प्यार माँ के प्यार का बदला इस जन्म में तो क्या। अगर हजार जन्म भी लूँ तो उतार

एक बार फिर यहाँ से हम रेशम हिमेश रेशमिया के साज और संगीत में सुनेंगे। आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: माँ के दिल को समझना, एक माँ के दिल को समझना थोड़ा मुश्किल है। चाहे सुख दे या दुख दे, बच्चा रहते हैं सब सिचुएशन में शामिल।
1: यादों से भीगा हुआ मेरे दिल का हर एक कोना है, तेरे पहलू में सर रख के जी भर के रोना है।

जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सुंदर हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और कहते हैं कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात जिंदगी का हर पल।

शिवाय। क्या बात है, यहाँ से आपको ये सुबह शुरुआत करने से ऊर्जा लेकर और शुरुआत करना है मन की शांति प्राप्त करने के लिए। पावरफुल ये जीवन जो है और ये दिन भी रहे, रिश्ते वही श्रेष्ठ है मेरे दोस्त, रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। जी हाँ, आपने सुने हैं कि रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास, जी विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। बात भी सही है मेरे प्यारे प्रिय प्यारे भक्त प्राणियों कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। और ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सुनो एक बार फिर कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप और मैं, हम सब भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर और जाते हैं। हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म जो हम करते हैं वो कर्म हम लेकर जाते हैं।

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. సుందర సా గణేష్ భజన యహాన్ సే శ్రవణ కి హే. పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ భజన్ ఆప్కే లియే, తాకి ఆప్కా దిన్ వో అచ్చే సే ఔర్ ప్రేమ్ సే ముస్కాన్ సే శురువాత్ హువే. ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि सुबह का हर एक पल, सुबह का हर एक पल का आशीर्वाद, हर एक पल हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है. सुबह का हर एक पल भगवान का आशीर्वाद होता है. मेरे दोस्त, मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है. इसे हंसते हुए जिए, हाँ इसे हंसते हुए जिए और अपने दिन को शानदार बनाओ. क्योंकि मेरे दोस्तों, दिल थोड़ा से छू जाता है ये बात कहने के लिए कि ऐसे कितने हमारे जीवित प्राणी हैं जो सुबह को फरवेल कॉम नहीं कर पाते हैं. आप ये सुबह देखे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं. या न्यू हुयो मोर्ख, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बस हंसते हुए चेहरे पे बड़ी सी स्माइल से इसे स्वागत करो. और कहते हैं कि ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है. हाँ, ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी.

भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, हर हर हर हर हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी, हे मेरे ईश्वर, कि आपकी कृपा, आपके कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि आपका आभार मेरे सभी सुनने वालों के सभी मित्र, सभी संबंधी खुशी रहे, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब खुशी रहे और उनकी दीर्घ आयु होवे। हम सब की दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, संबंधी सभी जो है खुश रहे। ईश्वर आपकी, हाँ ईश्वर आपकी, हम सब की हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुख जो है वो दूर होवे। यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबको सुख शांति प्राप्त कराएं।

अति सुंदर अति सुंदर, दिल को छू जाते हैं, तार तार जो है वो सब हिला देते हैं। इतनी सुंदर यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सुंदर सा भजन, मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य का रेखा, कर्म अच्छा तू करना, कर्म अच्छा तू करता चल, हाँ कर्म अच्छा तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख, तो फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता

खूबसूरत सवेरा आपको हम सबको बधाई है। नई सुबह, नई किरण, नई आशा लेकर आई है, नई उम्मीदें, नई रास्ता। ये जहां एक दिन नहीं, ये मजह, ये पल एक दिन नहीं, आपके सपनों को साकार, हाँ आपके सपनों का साकार करने एक और मौका मिला है मेरे दोस्त। आपका पल सुखद, सुखद में सुंदर एवं खुशियों से भरा रहे। हम सबके पल जो है वो खुशी, सुंदर एवं

आपको ये दिन, ये पल, ये सुबह बहुत सारी बधाइयाँ हो। शुभ प्रभात आप सभी को। उदय उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। हाँ, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है। ऐसे ही मेहनत करने से भी हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, धीरे धीरे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, हाँ, धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार का प्रकाशित कर सकता है, जैसे कि आप। जी हाँ, आप में धैर्य है, आप में धैर्य है, आप में तपस्या है। यू हैव अ विल ओम दूर द खान ओम दूर द बरेकन द बेंट यू हेलमाल ऑफ द यूस्ट वेग एंड दार बे हैव यू ओक द kracht van uw lieve Heer bij. En dan kunt u zelf zien hoe gelukkig u op den duur kunt zijn. En het enigste is doorzetten, gewoon doorgaan. In alle positieve dingen.

सुप्रभात मेरे दोस्तों, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्राणियों। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ। हाँ, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। हाँ।

Wij zijn allemaal gezegend. Ja, en dan wensen wij u ook vanuit Fahun Hindustani Radio een gezegend dag. Nieuw begin. Nieuwe kansen. Nieuwe lach. हंसता वही है मेरे दोस्त हाँ हंसता वही है जैसे आप हंसते हैं जो दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से हार जाता है आपका आज आज आपका आज हमेशा खुशहाल और सुखदमय रहे हाँ आपका आज ऐसे ना सोचो कि आज आज नहीं अभी कुछ पल के बाद भी आप कहोगे कि आज का दिन एक घंटा के बाद आप भी कहोगे आज का दिन रात में होगा तो भी कहेंगे आज के दिन आज की रात क्योंकि ये आज कभी जाता नहीं कल कभी आता नहीं हाँ कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं

टाइटल सॉन्ग जो हमने मिलकर और सुने हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नाम भी यही है और लता जी की आवाज़ में हम सपने और प्यार के साथ सुने हैं आज इस खूबसूरत दिवस में। हर पल में प्यार है लीफल स्टार्स, हर पल में प्यार है, हर पल में खुशियां हैं, जी लो तो जिंदगी है, खो दो तो यादें हैं।

0: मैं कहती हूँ हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना ज़रूर से गाएगा, अगर ज़ोर से नहीं तो ज़रूर से गुनगुनाएगा, मन में मुस्काएगा। तो सुंदर सा गीत यहाँ से इस कार्यक्रम में आपके लिए चुन चुन कर और लाया गया है, तो यहाँ से हम सब मिलकर और इसी ही तरह सुनते ही चले जाएंगे। हम आपके लिए यहाँ से चुन के रखी हूँ, सुने वालों, तुम जो मिल गए हो, और ये गाए हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा। जी हाँ, ऋषि नित्य प्रज्ञा, ये सुंदर सा गीत जो कॉफर किया गीत है वो गाए है, तो हम यहाँ से सुनेंगे उनकी आवाज में।
1: क्रेजी डिवोटी के पागलपन की पराकाष्ठा। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी सेड अबाउट दिस सॉन्ग।

नित्य प्रज्ञानंद से जो हमने यहाँ सुने सुने वालों, और ये गीत जो अपने डिवोशनल डिवोशनल चुन में जो हम सबके दर्शाया है, तो सुंदर लगा कि एक गीत भी आप कई रूप से इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगा सकते हैं किसी तरह में, जैसे कि प्रभु से जोड़ सकते हो या अपने प्रेमिका या प्रेमी से जोड़ सकते हो या कोई भी।

0: एक और सुंदर सा गीत जो उनके मुखारबिन से हम यहाँ से सुनेंगे, ऋषि प्रज्ञानंद की आवाज में।
1: ज्ञान चर्चा करता हूँ, ध्यान करता हूँ खुद और सिखाता हूँ लोगों को। सेवा का समय हो तो भरपूर सेवा भी है, लेकिन मेरे जीवन को बड़ा सुंदर बनाने वाला है जो भक्ति का गाने का एक जो रस गुरु कृपा से जो मिला है, मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि मैं गा पाता हूं। मेरे गुरु

मेरी ट्रेंड गला तो है नहीं, तो सुरों में कई बार ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन जो भाव मन से निकलता है वो मुझे लगता है आई फील सो ब्लेस्ड सो दैट आई एम एबल टू गिव सच हैप्पीनेस सच जॉय सच डिवोशन टू पीपल अराउंड मी। इस गाने के जो शब्द हैं, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, आई फील दिस इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टू।

तो ऐसे सुनने वालों आप सुनते हैं कि गीत जो है तो आप जैसे हमने कहा है कही है कि आप अपने इश्क की भेंटी भी कर सकते हैं अपने प्रेमिका प्रेमी के या जो जो जिस समय पे आपके दिल के पास हो आप उनके लिए गा सकते हो पेश कर सकते हो।

अपनी जमीन, अपनी जमीन, अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी में कब मिलती है, मांगने से जिंदगी में कब मिलती है, खुद खुद की अपना नया इतिहास बस पैदा करो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, कुछ ऐसा करो कि आप जान पहचान में बने रहो। तो यहाँ से हम इस बार सुनेंगे पंकज उदास जी की आवाज़ में कि निकलो ना बेनकाब

पंगज उदास जी ने कहते हैं कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है, तो ये आप पर निर्भर है कि आप नकाब या बेनकाब पर चलते हो। आप इस पर भी कपड़े डाल सकते हो या बगैर कपड़े यानी कि नकाब यानी चेहरा ढक कर, और भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अपना चरित्र पे भी आप पर्दा करते हो या ना पर्दा करते हो, आपका व्यवहार कैसा है, ये इस पर आप कैसे आप इसे कॉन्टेस्ट देते हैं, तो ये आप पर निर्भर है ना। ख्याल ओक फॉर मई तुर्लक।

मशहूर फनकार पंकज उदास से हमने सुने, तो ये इनकी इनकी सवालों का जवाब तो मैं तो ये देना चाहती हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसो मत, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बार हम सुनेंगे भाई बहन के आवाज में नेहा और तोनी कक्कर के।

आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, जान पहचान वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपिका सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार हो जी।

सुनने वालों, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो को प्यार हो जाता है तो चलते फिरते बस कुछ गुनगुनाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आप उनको मुस्कान देखकर, उनके चेहरा देखकर आपको पता हो जाता है ये कहूँ दिल बैठे बैठा है। ऐसे ही होता है सुनने वालों, हर दिल जो प्यार करेगा वो ज़रूर से गाना गाएगा। संगीत और संगीत के प्यारे सुनने वालों, ये आप ही के लिए सब गीत चुनकर और रखी हूँ।

मेरी सनम, आपको तो पता चल गया होगा कौन सा फिल्म है। जी हाँ, फिल्म संगम से हम यहाँ से आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीत निकाल रखी हूँ और इस बार चलेंगे कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगी ज़रूर से होगा।

0: जरूर से होगा, संगम जो जरूर से होगा, इसमें कोई सोच के बात नहीं है। आपको तमाम खुशियाँ और खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, और यहाँ पर आपके लिए चुन कर रखी हूँ वही मशहूर फिल्म फिल्म संगम से ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर।
1: मेहरबान लिखूं
0: है ना, दिल छू जाए।

सुना दे कि आप मेरी जिंदगी हो और आप ही बंदगी हो। ले फंदाख वेस फ्राई एंड डांस, जी हाँ ले फंदाख वेस फ्राई एंड डांस, द टाइट फ्लिग आन ओंस फोरबे, मार द हेरिनरिंगे die we onderweg verzamelen, zullen altijd blijven. Een warme groet, positief blijven is het geheim. Is het geheim van een mooie, gelukkige leven. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Leef en geniet. Enjoy is your day.

आप ही के दिल के पास, आप ही के गुजारिश में ये सुंदर सा गीत आप ही के लिए चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। खुद को खुद ही खुश रखे, खुद को खुद ही खुश रखो, ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि अपने आप का है, आप ही का है कि आप अपने आप को खुश रखो।

जिंदगी दो पल की है सुनने वालों, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए कल को छोड़ो और आज में ही जी लो, जी हाँ आज में ही जी लो।

वही मशहूर फिल्म संगम से मुकेश साहब के आवाज में दोस्त दोस्त ना रहा।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने मालविजयंती मालाजी इस फिल्म में मिलकर और अपना कमाल दिखाई है। तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी। क्या कहे क्या कहे क्या गुजरी इस दिल पर, जिंदा तो रहेंगे पर

0: देखो हम पर सपना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी।
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार।
0: जी सरकार।
1: अच्छा है त्योहार।
2: अगले इतवार, अगले रविवार का पता नहीं कब मिलेंगे, पर मिलना जरूर। बाबुल की गलियां, बाबुल की गलियां फिल्म के नाम, ये सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है। और कहते हैं, हाँ कहते हैं कि हेत लेवन इज अ सर्कल फन खलक फरद्रित मोइलक तैदन ए नतुरलक खलक तैदन। Als je een moeilijke tijd doormaakt, onthoud dit zeker. Dan staat er vredige momenten zullen zeker en nog eens zeker komen.

आपने सुने कि चला चल लिफाफे कबूतर। जी हाँ, कबूतर और लिफाफे यानी कि एनवलप पर भी यहाँ पर गीत आपने सुने, और ये गीत आपके लिए चला दिया गया है फिल्म दीदारे यार से, हाँ, किशोर दा जी की आवाज़ में, और ये पिक्चराइज किया गया है नेखंतीन त्वेयन तख्तख में।

अवश्य अवश्य कभी न कभी तो फंसेगी मेरी जाल में, इस बार महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। हाँ, खोजने पे पता चल गया है कौन सा फिल्म है। फिल्म का नाम मोती। हाँ, फिल्म मोती से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में। और क्या कह रहे हैं आज के वक्त में, आज के वक्त में ये कहते हैं कि नेम फंदाख लिफ द मे, neem vandaag liefde mee in je hart, vrede in je gedachten en vertrouwen op je pad, ja. En met zeker met Gods rijkste zegen, God bless you, ja. Yeah.

फिल्म तो आपने ज़रूर से देखे होंगे। हाँ वही फिल्म द ग्रेट गैम्बलर। द ग्रेट गैम्बलर से ये सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में और आशा भोसले जी की आवाज़ में यहाँ से आपके लिए फरमा दिया गया है। घड़ी के वक्त हम देखे, घड़ी की तरफ हम देखे तो इशारा कर रहा है विज्ञापन चलाओ। तो हाँ यहाँ से विज्ञापन चला देते हैं आपके लिए।

रेडियो आपके पुराने ताज़ा पुराने यादें ताज़ा करा देते हैं। किशोर दा जी और लता जी के आवाज़ में यहाँ से श्रवण की है।

सो ग्रेट सो स्वीट, तुमको हमारी उम्र अलग जाए, ये गीत आपके लिए पेश किया गया है, देखे तो लता जी की आवाज़ में, जी सुरेली आवाज़ लता जी के, और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला। निकटे फिर सस्तक में ये पिक्चराइज किया गया है, इसमें स्टार कास्ट है राजेंद्र कुमार, शायरा बानो, शशिकाला, धर्मेंद्र जी। ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुतमेर के रहने वाले श्रीमती माला जी के वास्ते।

2:30 हो चला है, 2:30 हो चला है आज शनिवार के सुबह की कार्यक्रम। हाँ अभी सुबह है क्योंकि आधा घंटा बाकी है 12 बजने में। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए यहाँ से थोड़ा से हम चेंज ला देते हैं,

मैक्सिकन टैप रिमिक्स, उसी धुन पे ये ख्वाब हो तुम गा दिया गया है और वही रिदम में हम यहाँ सुने हैं। इस बार लेकर चलते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा दिजेश शेरे रिमिक्स कांची रे कांची रे।

रुक जा न जा दिल तोड़ के, साथ निभा ले मेरे यारे समझ बूझ कर औरो। जहाँ तेरी नजर है मुझे ये भी खबर है। इस बार है लातिनो रिमिक्स।

Isbarta Latino Rhythm Music Remix जहां तेरी ये नजरें फिल्म कालिया और किशोर दा जी जो गाए हैं इस बार है मैंने लिवा मैं से नोख इनकेर लातिनो स्टाइल हिंदी कवर सॉन्ग मस्त बहारों का तू है आशिक

0: और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2247। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Swagatam aap sabhi ko. Baraka wacht, ja, op de klok, op de kop. 12 uur, 12 uur, precies 12 uur.

0: के लिए रिमिक्स
1: है अपना दिल तो आवा
0: जी, रिमिक्स वर्सी आपके लिए।

मियाँ बीबी दोनों बैठकर और दिल रेडियो के करीब होकर दिल लगाकर रेडियो को फॉलो करता है। खालिद और रुखसाना वागित हुसैन उनके लिए पेश हो रहे हैं। सुंदर सा गीत ये भी लव रिमेक्स है। बहुत प्यार भरा गीत लव रिमेक्स आजा पिया तो ये प्यार दूं।

very sweet, beautiful, प्यार भरे गीत आपके लिए. My God, my blowing. और ये सुंदर सा गीत पेश किया गया है रुखसाना और खालिद, ये दोनों मियाँ बीबी रेडियो के करीब होकर और रेडियो को फॉलो कर रहे हैं दिल से.

इस बार है वादा कर ले साजना, सोलफुल मोहम्मद रफ़ी और लता जी के आवाज़ में ये रिमिक्स फिर से आपके लिए।

इसका मतलब है यहाँ से मैं आपसे आज के लिए रुखसत हो रही हूँ। मेरे प्यारे सुनने वालों, देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। ये आशा उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में ज़रूर से मौका मिलेगा यहाँ पर उपस्थित रहकर और आपके सेवा करने के। तब तक आप अपना ख्याल रखना, दुआ प्रार्थना में मेरी को भी याद करना। अनहेल खुय दाख मुय दाख ये नमाज फाइन दाख

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है और वो है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

प्रियथा रोबी उदित नारायण का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आपको हमने बस सुनाई दिए हैं। हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम की लेकर हमारे यारो हमारे दोस्तों। अब देखो भैया, एक बरिश के बिटिया बेबी, भैया एक बरिश के सी एक आसन बेबी, एक बरिश के लड़का सूरीनाम में बुढ़ के मर गए भाई। तो बोलिए जॉनी उतना गैल हुई पौड़े तिस्खीन खरपन से इंदर दांत उपौड़े ना गैल बकी एक बल्टी पानी में बिचारी गिर गए और उमा ये लड़का बिचारी मर गए है। बहुत दुख के बात है तमाम राजो फाहुन के खरूप इसके दुख में हम शामिल है। इन यार हमें बुधवार के अपन घरे एक बल्टी पानी में गिर गए है। ई बात हुए क्वाकार स्त्रात में श्री नाम है ई फ्रांसी ईखन के को सही स्त्रात है और बोले फुरनोमन वार्ड के एक बरिश के लड़का बुढ़ के मर गए बल्टी में भैया। अब खैफत मोनाइबली सैन वास्तराइंट वार इन मेट वाटर खफिल द एमर स्टोन फरमुडलक प्रोबेर द से इच आई द एमर तपाकन एंड फील अपन लड़कन के मोई से देखियो भैया। एक बरिस के लड़का अपन जिंदगी में बिचारी कौन चीव देखे रहा और वो गुजर गए है भैया, गुजर गए है और बहुत बहुत दुख के बात है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। अब देखो एक और नई खन तीन यार के गुमान के लड़की लाश हो गए सूरीनाम में मौसी। 19 बरिस के लड़की लाश हो गए सूरीनाम के बांचित हुए हैं जेकर नाम बा लेडीज अनाबेल बालसेंदे मार्टिनेस इन सूरीनाम। बताए गए है का 3 महीना हो गए ये लड़कियां लाश हो गए है। परिवार बड़ी दुख में है और सब एक मिलजुल के खोजे है। द मुदर हिप शेख मेट आंद्र नोत ओप्रो खवेंट मेट नियो और बोले हैं एक्स्ट्रा डीड इन फॉर हर बसौरख है इन द टेलीफोन फॉर हर डॉक्टर दिस ऑफ फॉल्स द मुदर मोमेंटेल इन हंदन सैन फॉर अ मन दिस एन आइसोलेटेड एंड दैट आस ब्लाका ओकर माई एगो आदमी संगे कर भलाका बोले है स्टार्ट ऑफ एंकल फोटो दिस फैमिली ही फर्स्ट टेरक द मदर सेड दैट हर नीट लुक हर डॉक्टर सेल्फ टू स्पीक एंड देयर इज एक्टर गीन बेवेस्टिंग दैट दिस मैन अ स्ट्राबार फेट ही प्ले की बोले ओ ही ना ओके लेके चल गई हुई बोले है 2 तारीख दिसंबर से लाश भेले। तो बोले हैगा खबरन ऑफ 27 दिसंबर 2006 सैंटियागो द क्यूबा में और बोले फरट्रैक वोंड से हर फैमिली इन सैन माइकल इन पाड्रोन इन हवाना में और बोले है क्यूमान दी इन सूरीनाम वो ने इन मेंसेल्स के क्यूबा के आदमी ढेर सूरीनाम में रहे भैया। और ये सब चीज तो होता है, दुख के बात है। 19 बरस की बिटिया कोई लाश हुई है भैया तो बहुत बहुत दुख के बात। अब देखो भैया डीजे फ्राई खलातन मेंशन स्मोकल के बात हुई आदमी के नाम बा डीजे ना बजे वाला नानी एकर नमवे है डीजे एरएस सिपाही बोले है बसवार खमाक तेख फेर्दर फ्राई है फैज ननीमिंग अर्फकान जोन मौरी ने पतुआ है भैया। बताई गई है 16 तारीख सितंबर के बोले के पकड़ी से उन्दर में मेंशन स्मोकल एंड मेंशन हंडल के बारे में बोले हैगा ये रमिया करत रहा और जाने मेंशन हंडल के बारे में कैसे हमारे जनता हम जाई रेसलान भैया रेसलान बदमाशी करे बहुत दिन से पूते नुआ बोली ला नानी उग्रहीनर पैदा आगे अब वो अपन प्लेन उड़ावे भैया जो नाटो हैगा नाटो के ओम खीफिंग में उड़ावे कहने पोलैंड के खरेंज पे उड़ाई से और का बोले हैगा अब यहां बतावे स्विस एंड फिंस खफेक फ्लिक्टेकर से डोंडरदाग उठखरे ओम रूसीसे मिलिटेयर लुकफार्टेकर तो अंदर स्केपन मेल द फिंस लुक्टमा दी फ्लोग बोवर द इंटरनेशनल वाटर फ्रॉम द फिंस गोल्फ वो सब गए स्वीडन के फिनलैंड के बोले है ग्रुप रेसी से तो स्टेलन स्टेलन फास्ट दैट इट गिंग ओम ए मेदर गेवेक्ट फ्लिकटेग एंड द ट्रांसपोर्ट फ्लिकटेग स्वीडन जो ने फिनलैंड है गा बेडन हम लोग के नाफो लेट है वर्कन सामन ओम ए लुक्स रेम दैट फॉरदीगन एकर बारे में फिनलैंड बोले इस तक के दैट लैंड गसामलिक सो एन आइडेंटिफिकेशन मिशन uitvoerde मेदर नाफो लैंडन ओस्ट एंड ओस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ओस्ट यूरोपा हैवन अफगलोपन मानन मेलिंग मा रूसलैंड स्कैनिंग इन द लुक्स रेम और हम मांगले जाने हम लोग के फेयर लीडर जो हैगा और मार्क रुतो एकर बारे में का बोले हैं
कई नहीं एक बारे में बोलत रहा। अब देखो भैया 6.6 मिलियार्ड यूरो के बारे में उक्राइन के सबन फ्राई करे से एयू और भरी के नानी हम लोग के बालास्टिंग वहां भरीगा। शुक्रवार के से स्टेम करी से उक्राइन के 6.6 मिलियार्ड फ्राई करी से मिलिटेर अंडरस्टैंड करे से जो रसलान से लाए हुए हैं एयू बैतलांस शेफ काया कालास अब एक सेट गेल्ड ओम कम फ्राई uit de Europese vredesfaciliteit EPF's के बारे में और बोले 4,7 miljard is bedoeld voor de EU-landen zelf waarvan sommige landen volgens hun volgend kalas hebben aangegeven. Toch maar jenta आप लोग को हम बस समाचार सुनाते ही रहते हैं। हमारे जनता आप जोन आदमी यानी कि बैतलांत में है अमेरिका में है तो मंगे सूरीनाम के पासपोर्ट तो हुआ जाए के बनवाई सके है यहां बतावे सूरीनामर दी इन बैतलांत एंड क्राइकन अ न्यू मोगलकाइट ओम हिन पासपोर्ट साकन अफ द हैंडलन और बोले प्रेसिडेंट सिमोन बुधवार के न्यूयॉर्क में पासपोर्ट में बोली से बोले हैगा Application service officieel gelanceerde dienstverlening moet het aanvragen van een Surinaamse paspoort toegankelijker en efficiënter maken, terwijl de beoordeling, goedkeuring en de uitgifte volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid blijven. Dus toch Surinaamse paspoort mag je vanuit New York meer, dat is het nu wel mogelijk van afgelopen woensdag. Bolle paspoort blijft Surinaamse staatsdocument, ambitierijk verder naar New York. बहुत लंबा चौड़ा लिखल जनता इसके बारे में आप जनियो मंगियो जाने कैसे हम न्यूयॉर्क में बनावे सूरीनाम के पासपोर्ट दान मुझे यूली एवं तोह एवं ऑफ द वेबसाइट फन ओवरहेड खान सूरीनाम के कर्जा भैया प्लाफोन हबड़ा कर दे इसे नानी प्लाफोन वहां हबड़ा कर दे इसे स्टार्टस्कूल फन सूरीनाम यूनी 2026 में बोले डाल रहा मार ब्लेव रूम बोवन वेटलिक प्लाफोन फॉर 60% van de bruto binnenlandse product volgens de wettelijke berekening bedroeg de schuld van 119,6% van de BBP. BBP kan met lepe jetra toke inkomsten de swam awe he. Jetra export ose jada toke namake karja leweke. Bakke isab jaisie pahile bautus ki tijd pe plafon wa overschrijden kardera isab pin karde isab bhaiya karjua bahu jabarja he. Ose saman dwingi kare kursua bachaweke. Ma karjua तो सबके चाहे भरे के द सूरीनाम से इकोनोम बोले हैं मेल की देर तक तो बुलेटिन है द स्कूल्ड ने फॉलोइंग द वेटलिके डेफिनेशन मार्च 2000 मार्च में नॉक 121,1% लागर यूनी में बोले 119,6% और बोले फॉलोइंग द इंटरनेशनल डेफिनेशन डाल्ड द स्टार्टस्कूल इन द सेल्फ द पीरियड फ्रॉम 26,6% तो कुछ इकोनॉमी बारे में सूरीनाम के आप लोग को हम बोले बताएं दे वन द इकोनॉमी फन सूरीनाम गात नीट गुड मेंस गात नीट गुड। अब देखो भैया सूरीनाम में बन जाने तो जाने चारों बगल कोई के दुकानदार है सबन वाख्तर धरे भैया निकेरी के ओर हम जाए ना नानी निकेरी में एगो दुकान के नाम बा फ्री दी ऋषि वेख में हुआ पे एगो वाख्तर के हाथ गोड़ बांध के सुता है रहा चोर भाई निकेरी खलेद आनहोडिंग बोले द गवेलदादे बरोफिंग बाय द विंकल सा बोले हेगा एन आगे 45 यार के बेय टेंडर रूफ वर्ड द वाख्तर गेकनीक फन अखतरगलातन terwijl de dader er met een groot geld bedraagt de Surinaamse dollar vandoor ging op het eigen diefstal met geweld 7-8 september gebaantje te weer recherche pakkelijse om te zoeken Nikeri behoed veilig bijna Nikeri hem jahela te veilig voelen karela lekin hem deko Nikeri me ka hoe legal he die baan te wega sairaan weg in Nikeri en vervolgens aangehouden hem ja pakkelijke he paiswa geld werd niet bij hem aangetrokken ट्रॉफन पैसवा ना पैसे भैया तो पैसवा कहीं होल होल खोद के गाड़ दे ले हुई मौसी तो कहां से तू पये ऊ बोलिए हम जहलिया काट ले आबे तो फिर मौज कर
ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के जनता हम जाने जीनी जीनी विजयनवती।

और दोस्तों इसी ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा तुम्हारा मिलर रेडियो फोन के माध्यम से फिर मिलेंगे। बाय बाय स्वाय स्वाय। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम के 6 से 7 बजे तक यानी कि लाइव यानी कि न्यूज हम पढ़ते हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे रविवार को इस प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं। बस सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्वाय स्वाय।

हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9

0: और क्या हुआ तेरा वादा नहीं किसी वत का लेकिन रही मैं सॉन्ग जो प्रभत पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय हाय

और आगे भी यही शोर, पीछे भी पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरा दुनिया में शोर है, द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन और

ए बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे तब

0: om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, 405 euro per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor 510 euro. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf 50 pond op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1701 of mail naar bglreizen@outlook.com. Hurry, come, kill ye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-36522-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
4: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai. हर रोज की तरह हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है जहां तक ये आवाज पहुंचे जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चले चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नई शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जाई किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेहती ट्विन सेस्ता का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जी दोस्तों, एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जय दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेस्ट का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जहाँ दोस्तों तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नेकंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई हंटिंग ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी में आप लोग के लिए चलते नई हंटिंग वेफन शस्तक में, जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में, आँखियों का नूर है तू

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या है इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशो द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशो। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smirk?
1: What is look?
0: What's this hissle? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिरपाहू की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में, केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रोठू सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए। अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और अपवादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे मैं नदिया की धारा बाहे तेरी किनारा। धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरे सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वादिका रामसुकुल जी की आवाज़ में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

रायन मनोहर जी से आप अभी सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे एक मैशो अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों दविंदर सिंह सिवनाथ और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं, दो साथी जीवन के।

अभी आप सुन रहे थे दो साथी जीवन के, दविंदर सिंह शिवनाथ के साथ में सविता सिंह आपको सुनाने वाले थे। इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामचेतन आ रहे हैं प्रोग्राम में एक मेदली के साथ।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामजतन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे, यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

आकाश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

रुबिन अधीन जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं आजारे परदेसी।

मैं तो कब से खड़ी इस बार भी आप सुन रहे थे सविता सिंह जी की आवाज में कविता राम किशुन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं कैचिंग माउ कदी।

अभी आप सुन रहे थे कविता रामकिशन जी की आवाज में कैचिंग मालगाड़ी। प्रोग्राम में आ रहे हैं सविता सिंह जी डुप्पट

सविता सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दुपट्टा। मैं प्यार का दीवाना रायन मनोरथ प्रोग्राम में आ रहे हैं।

रायन मनोरथ जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, मैं शॉप अभी आप सुन रहे थे। दुबराज प्रसाद और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं।

0: सजन व अभी आप सुन रहे थे संदेश युदीन और सविता सिंह जी की आवाज में, रानी दत्ताई जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Selecta and Jerry Bass Concert, Sumanta Pina.

यानी दत्तय जी के आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये चटनी सॉन्ग। मोर चिरैया तोर चिरैया, आदित्य रामसुकुल जी आपको सुनाने वाले हैं।

आदित्य राम सुकुल जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दो चिरैया मोर चिरैया। सोनिया सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, शेक मी फेस्ट।

सोनिया सिंह की आवाज में भी आप सुन रहे थे शेख में वेस्ट, सूते ना देवे सेलेक्ट जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

0: दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। दिल की गहराइयों से ये गीत हमेशा ये शख्स गाता रहा। ये फनकार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम इसे अवश्य याद करते हैं। स्टूडियो में भैया जॉन है, भैया यूस है, और मेरा दाहिना हाथ भैया रजेश बदलू, और भैया पूरन है। भैया जॉन और भैया पूरन को एक दो गाने के बाद हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले आप दोनों के बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद दे रहे हैं कि करीबन कितने साल में 9 साल बाद आए हैं ना, करीबन 9 साल बाद आए हैं। मौका नहीं मिला, अगर शायद कोरोना नहीं होता तो आज के दिन आप लोग की ओपनिंग होता, कोई कुछ होता, कोई कुछ होता। हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग आ गए हैं। भैया जॉन
1: नहीं भाई बदान से ये ऑडियो देखेंगे एंड देयर कोर्ट,
0: ये तो होना ही था।
1: हाँ, अब नौ बरिस बात ना मन हमारे यहाँ में एक महीना बाद हम लोग यहाँ फिर रहा एंड नतीजे अलग लाइसरार्स जो आप बहुत इंतजार में हमारा ग्रुप के वो बेनकॉर्ट हम लात बहु को की कोरोना नहीं करी एंड दन सही होते भाई बदंग फुर लॉयस्टर मैन से एंड जो अनाउंसर साहब यहाँ बैठे हो जितना दोस्त लोग है सबके बहुत धन्यवाद एंड फाहून की तरफ से
2: और जरूर भगवान की कृपा जरूर मुलाकात होगा। अच्छा भाई थैंक यू।
0: अच्छा भैया जॉन बहुत बहुत धन्यवाद। भैया गांधी पूरन हमारा ऑर्गेनाइजर जो है
3: नखमार से बदंग टोक नाम से ऑर्गेनाइजेशन जी एम प्रमोशन एंड स्टिफ्टिंग दोस्ती vandaag zou hij onze Mukesh Ji 98 jaar worden. Helaas hebben we dus niet kunnen herdenken, maar over 2 jaar gaat hij 100 jaar worden en dan beloven wij het luisteraars groot. Dat we heel groot gaan hem gaan herdenken en ook in een mooie theater. Dat beloven wij wel. En nogmaals, Radio Fahon, bestuursleden, directie, personeel, iedereen, heel, heel, heel hartelijk bedankt. En tot horens voor straks, welterusten.
0: Bhaiya Gandhi, bahut bahut dhanyawad. Pata na hai, kal kisne dekha hai, lekin main abhi se soch raha hoon ki में ये 100 साल हम लोग जरूर देखेंगे।
2: बहुत जबरदस्त।
0: अपने बारे में तो नहीं कह सकते हैं लेकिन
2: ना, ना, ना,
3: ना, ना, ना, ना, सही सही बात है मार, प्लानिंग मार्कर एंड दिट वॉर्ड नीट प्लान प्लान बे मार दिट वॉर्ड प्लान आ
0: मैं हेल फेल आर्म एंड बेन ओख एंड हाक दि मुत वे आलम आल पोत
3: ये प्रसिस
0: भैया जॉन और भैया गांधी पूरन भैया योग्स और भैया रजेश बदलू भैया शिव भी यहाँ था और भैया महेंद्र गुदर भी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जो कि आज की रात अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। इसके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर भैया शिव जो हैं और जितनी अमरूपर से अमरूपसर से जो कार्यक्रम नहीं सुनते होंगे और शायद सुनते भी होंगे उन सब की तरफ से आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। ये आखिरी गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ। जी हाँ, चलिए ये गीत हम आपको सुनाते हैं। एक गीत हमने रखे थे भैया गांधी पूरन ने कहा, फिर भैया का गांधी पूरन ने कहा जी नहीं गंगा इसे निकाल दो। जिस तरह से मुकेश के गाना निकाल दिया गया चलो हम भी निकाल देते हैं, इस गीत को निकाल देते हैं और एक डिपो में रख देते हैं, ये एक दिन निकालेंगे ज़रूर।
3: तो ऐसे तो हम सीख ले बाटी ना कौन गन मारा है मेरा नाम योकर की फिल्म
4: जीना
3: यहाँ
4: नहीं नहीं नहीं नहीं

देख सकते नहीं तुमको जी भर के हम। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल चुराने वाला मुकेश चंद माथुर आपको सुनाए फिल्म इल्जाम में से निकाले हैं नेकती सेफ तक 1970। भैया जॉन सुनने वाले श्रोताओं, भैया जॉन मेरा ये मेरा कहानी, इतनी देर से बैठ कर मुकेश जी की कहानी बताते थे, अब मेरी कहानी सुन लो भाई। जो गीत मैं अब चलाने जा रहा हूँ वो आखिरी गीत है आज की रात की। और ये गीत की कहानी ये है, हम लोग साथी तो थे ना, हम लोग भारत गए तो एक आदमी के पास गए, उनके पास बहुत गाना था, तो ये गीत उन्होंने कॉप टेलीफोन को हम लोगों को सुनाया और बताया कि इतना पैसा दो। हम लोगों ने 3 दिन उसके बारे में सोचे, चौथा दिन, पांचवा दिन आने वाला था वापस एम्स्टरडम, तो चौथा दिन गए, हमने कहा अच्छा भाई दे दो। अब इसके लिए तब खुल्द का ज़माना रहा, हम लोगों ने 305 तक खुल्द भरे इस गीत को, 305 तक खुल्द हाँ भरे, और मिला किस पर, एक कैसेट पर, एक कैसेट पर उन्होंने ये गीत दिया। और वो गीत, यहाँ वो गीत बाद में देखो हर एक के पास है।

ना कजरे की धार, ये नॉन फिल्म का गीत है और हमने आपको सुनाए हैं। और एक आखिरी गीत चला रहा हूँ क्योंकि लोग तो कहते हैं इसे बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन कल भी कुछ करना हर एक को यहाँ जो बैठे हैं, तो ये आखिरी गीत मैं चला रहा हूँ। एक बार फिर भैया जॉन, भैया गांधी, भैया शिव को और भैया महेंद्र गुदर को, भैया यूस को, यूसेफ को, और मेरा दाहिना हाथ जो है मेरा तकनीशियन वो है भैया राजेश बदलू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज की रात मुकेश की याद में मेरा साथ दिए। चलिए ये आखिरी गीत से हम समाप्त करते हैं।

0: खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे और अगर पब्लिक को ये गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकाल दिया जाए।
1: आज तक लोगों को दिल जलता है तो जलने दो, याद है जी। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए इसे गुनगुनाएं, अगर
0: जरूर लीजिए, अगर आपके पूरा गाना।
1: हाँ हाँ जरूर सुनिए।

इस कलाकार ने दिल जलने और आंसू भरी जीवन की राहों से निकलकर बहारों के भी ख्वाब देखे। मचलते हुए आशिक के रूप को प्रतिबिंबित करता हुआ उनका यह स्वर।

मुकेश संगीत का आशिक था। बड़ी से बड़ी कठिनाई उनकी धुन में बाधक नहीं हो सकी। बस मुकेश हमेशा ही जीवन में गुनगुनाते रहे। उनकी प्रेरणा जाने कौन थी, किसकी मित्रता उनके गीतों को गीतों का रूप देती थी।

0: मुकेश ने आखिर गीत संगीत के जीवन में प्रवेश कैसे किया, उनके पिता क्या चाहते थे, वे क्या बने, उन्हीं के स्वर में सुनिए।
1: ओ था, वो भी एक ड्रीम था। हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साहब गाना गा रहे थे और उसमें दो साहिबान फिल्म के आए हुए थे, तो शादी की बारात को एंटरटेन करने के लिए लड़की वाले भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है। हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई, गाना वाना गाएंगे। हमने गाना वाना गा दिया था। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आ गए।
2: ये कोई फिल्मी गाना था जो आप गा रहे
1: हैं? जी हाँ, मैं सैगल साहब का गाना गाया।
2: अच्छा।
1: हाँ, सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए। कहले साहब आपके साहेबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कह ले क्या कर रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये। मैंने कहा जी बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को तो मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ही एक नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, और तो किसी को जानते जानते नहीं थे। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज पर जमन नहीं हुए। वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क क्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को और ठीक हो जाएगा। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था, और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

हुई।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

यारो देखा जाए आपको हम नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग सुनाते हैं और ये कौन सा गीत है मूवी का नाम है यानी कि एक मस्त भरी गीत है अभी आप लोग को बताएंगे और आगे इस गीत के बारे में।

और तेरी मेरी बीच में कैसा है ये बंधन, तो ये अनजाना है कमल हसन रति अग्निहोत्री का ये मूवी एल्बम हैगा, नचिकेता लता जी का ये सॉन्ग है एक और हो जाए।

और चेहरा तो क्या देखियो भैया, दिल में उतरियो तो उसका मजा आपको और मिलेगा। कायांगनी कुमार चानू।

और देखा है क्या, देखा है क्या, देखा है साजन के प्यार देखा है, और कहां देखा है, आंखों में जाकर देखा है, और देखा है तो और आगे क्या देखेंगे। नैतिकेल लता जी पर माशी मोहम्मद रफी का एक और सॉन्ग हो जाए, तेरे नीले नीले आंखों की।

और ऐ मेरी जोहरा जबी तुझको मालूम नहीं है कि आप कितना हसीन है और तुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी हम कितना जवान है। ये तो बातचीत हो रहा है और ये बात तो दो प्यार करने वालों के लिए है। और उसके बाद हम चलते हैं, आप यहाँ आए और जॉनी के पास किस लिए गीत सुनने को, आप यहाँ आए किस लिए। और दादा किशोर जी का ये सॉन्ग है, आशा भोसले का ये गाना है, हिंदी मूवी सॉन्ग। तो दोस्तों किशोर दादा आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है कल आज और कल, 97.1 का ये प्यार भरी मस्त भरी सॉन्ग है, जिबर हिट सॉन्ग।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो

0: इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: और आपको मुस्कुराने की तो बात है दोस्तों, और ये गीत एक बेमिसाल गीत किशोर दादा आशा जी का, और हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। वो है, वो क्या है, आप खुद ही सुनिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, क्यों छा जाती है, जो किसी को प्यार आ जाते हैं।

दिन है बाहर की और लाखों गम संसार के और आ जाना। तो कुछ नए कुछ पुराने गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

लवली सॉन्ग थे और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 निकट का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरण फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी का नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पति पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नई खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्नेट, और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों, और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है, और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है, नहीं बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैती जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

भी बिट जाएगा और 17 बस 52 में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो तुम,

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है। सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों, और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

आए जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिकर नाम है वक्त नहीं खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।